我说你那竹马的来说别离苏哈西尼苏哈杜拉帕西尼

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026 दिन के 10:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 11 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे माननीय केंद्र मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 का सजीव प्रसारण। इस प्रसारण को हम दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।

0: भारतीय सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सब महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल के अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सेवा, बलिदान और शौर्य के साथ गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है।

0: यो तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा, उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है। परंतु हमें इसके सारांश को छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्तचित्र।
1: वरिष्ठ की सेनाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के 9 से 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री पीएफ रुस्तमजी के नेतृत्व में रियासत ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अमन साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल और पराक्रम का परिचय दिया। देश मुक्ति संग्राम में रियासत की अहम भूमिका रही है। वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ रियासत ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियान और पूर्व पर भारत के प्रतिबद्धता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय के बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तर राजस्थान तथा गुजरात के विशाल वन जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सेना पहलों के संरक्षित सीमा पर एवं गोलाबारों की तस्करी एवं वस्तुओं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर चुनौतियां हैं। मेरी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घरों आबादी उद्यानों की बहुता है। मानसूनी वन उत्तर पूर्व के जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जगह का प्रस्तुत करते हैं। पूर्वी सुंदर बंदरगाह तथा पश्चिमी गुजरात के खेत जैसे दुर्गम जंगली सीमांत इलाकों में रियासत के वाटर विंग के फ्लोटिंग ड्यूटी एवं अपराधमुक्त रास्ता इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। सीमा सुरक्षा के साथ साथ रियासत आंतरिक सुरक्षा जो भी रियासत चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंबल के दौरान रियासत में अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
2: ऑपरेशन सिंधु में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जवान सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
1: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पहलों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेगी। गृह मंत्रालय सदैव देशभक्त मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी मुल्क के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृहमंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की भगत से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में बेअस्तर अग्रसर है, जिसे सीमित कार्य की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करते हैं। व्यापक लाइट्स, गन आधारित निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ नॉन फोरेंसिक्स के उपयोग में भी

0: ही बचे हैं। सेना प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्म व्यास इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है। बीएसएफ में खेलों के प्रतिनिधियों में कानून परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खान पान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस टीम की मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्व जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर देश एवं दल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं दल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन एवं अन्य बैठकों के त्वरित निस्तारण को भी ऐसा प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को तोड़ते अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही बल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्र गीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और दल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सेना प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सेना सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के करकमलों से।
3: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they've done for the country and what they've achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Sri Amit Shah. And Sri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
4: BSF की 35 बटालियन की एक टुकड़ी एरिया डोमिनेशन के लिए आगे बढ़ रही थी। तमाम नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बार बटेरे ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रहे हैं शहीद।

रंजीत यादव 133 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 133 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही है शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका। राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सेना प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सेना प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रहे हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

दैवीय कथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

शुरेंद्र राठौर उप कमांडेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सेना के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्यारक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्यारक्षक नरबू शेरपा ने तैवान नदी के पुल के समीप उत्साहित व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए उस तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्यारक्षक नरबू शेरपा

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी मेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री महेंद्र प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सली और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें।
1: माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह।

0: Sri Amit Shah, the guest of honor of a year. He walks to the podium.
1: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्राज, मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री उत्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण के रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई, और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा करकर निश्चित करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया, और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी

काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है, और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृहमंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया, जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। और सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को यह बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में ये गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल इस सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझ कर ही देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई है, अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने है। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ करके देश की सुरक्षा करने का काम किया है,

ये हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमें राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कुत्तों तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झाड़ें, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और इस सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल अब 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेवा मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सबके लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चोर परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर उनके मर्म स्थान पर प्रहार कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को

नामकरण से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुपुक कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं एक लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ गई हो तब हमें भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपनियों के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अपडेट करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपके देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसंख्यिकी में अप्रतिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसंख्या का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चित मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, बीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूप है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूपों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना एक बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन

उनका उपयोग करके घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अलग रही, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या अब देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और हमारे जवानों ने करके दिखाया कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, इस सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो अब सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वायलेंट विलेज 1, वायलेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितने भी भूमि देने थे वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंड ओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा गिर दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमें एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमें इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कुटुंब परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता
कि बहुत

0: कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण महायोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं। और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देता मेरी वाणी को आह्वान देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: स्मृति चिन्ह भेंट करें जो महोदय के हृदय में
1: इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा। सेवा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री अरुण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: विशेष महानिदेशक DG of the Forest Security Force, Shri Praveen Kumar.
1: विशेष महानिदेशक द्वारा
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
3: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द
5: सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

Oh, my God.

Thank you.

0: Come to the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force, and well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall, and it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life, all the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam G. Memorial Speech, lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन।

0: I'm a Saturday commentator D. Andrew, OB in charge, Program Executive V. K. Tomar, Engineering Staff Ashok Kumar Mishra, Kamal Singh, Hemraj Meena aur Karyakram ke Prastutkarta Pramod Kumar ke saath aapko Akashvani Studio wapas liye chalti hoon. Namaskar.
1: Abhi aap Nayi Delhi ke Vigyan.
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम. इस कार्यक्रम को हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया था. आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर. दोपहर के 12:04 हुए हैं. आइए सुनते हैं फिल्म संगीत.

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर।
6: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
8: आरबीआई कहता है
9: तरह से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: बुद्धू नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
11: रुक जा बुद्धू।
12: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
10: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
11: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
12: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।

0: Mama bani zani, mama bani zada, re baba mama.
1: ढलान वाली आग जलती है जिसके इर्द गिर्द हम सात फेरे लेंगे और आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करेंगे। फूलों से ढके कुछ सपने मेरी आंखों में होंगे, घूंघट में छुपे कुछ सपने मेरी आंखों में होंगे।
2: आप सुन रहे हैं जसविंदर नरूला और कुमार सानू की आवाज में फिल्म विरासत का ये गीत।

0: हर मोड़ पे जी घबराए, हर मोड़ पे जी घबराए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना
1: मेरे दिल को कुछ नहीं भाए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत या आकाशवाणी का, जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
0: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
0: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
0: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ऑटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
0: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
0: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
0: अभिमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
0: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां, खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
4: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
5: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
4: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
5: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
4: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
5: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
4: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
5: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
4: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
5: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
4: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
5: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे

0: 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
7: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
6: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
7: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
6: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
8: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
8: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
8: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
9: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा।

विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से

0: विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
4: हमला करो, दुर्गा माता की जय।
0: और कुछ ही देर में सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा। कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
5: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
5: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
3: संभल कर।
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: प्रथम तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो। दुर्गा माता की जय। माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहबी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा।
5: मैं जा रहा हूं साहबी। साहबी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का, जैसलमेर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 1 बजे है, आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मुमल। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकरण में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों को व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि कई तरह की चुनौतियों के बावजूद BSF ने देश का गौरव लगातार बनाए रखा है। उन्होंने अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का चलन और हथियारों तथा ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम के लिए एकीकृत और व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के नए भवन की आधारशिला रखी। यह अस्पताल 63 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा।

0: मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मूमल।

0: गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। कर रही है सवाल मुझे जो लूजर समझकर, उन सबको जवाब देना अभी बाकी है। निभा रहा हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजाना अभी बाकी है। कुछ नहीं गया हाथ से अभी तो, बहुत कुछ पाना अभी बाकी है। मुमल सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी आरती
1: और सुधा पुरोहित का प्यार भरा नमस्कार।
0: सुधा, हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं, इनके लिए समय समय पर हमारे यहाँ पर लोगों ने बहुत काम किया महिला सशक्तिकरण के लिए, और महिलाएं जो है वो अपने आप में भी बहुत सशक्त होती हैं, क्योंकि देखिए ना कि न सिर्फ अपना जो ससुराल पक्ष है उसको वो पूरा संभालती है, बल्कि अपने पियर पक्ष के लिए भी वो बहुत कुछ करती हैं। अपने घर परिवार को देखना, अपने बच्चों को देखना, जरूरत होती है तो घर से बाहर वो काम करने के लिए जाती है, तो बहुत से काम ऐसे महिलाएं जो हैं वो अकेली करती हैं, इसलिए इन्हें मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए समय समय पर हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने काम किया, लेकिन इनमें एक बहुत ही खास नाम है, जो नाम है राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने जिनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: सही कहा आरती, राजा राम मोहन राय को नारी पुनर्जागरण का भी अग्रदूत माना गया है, और उन्होंने 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए थे। और आपको ये भी बता दूं कि उस समय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और महिलाओं की अशिक्षा जैसी अनेक कुरीतियां थी। राजा राम मोहन राय ने इन बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई और महिलाओं को सम्मान तथा अधिकार दिलाने का प्रयास किया। आरती, राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान आपको पता ही होगा कि सती प्रथा के विरुद्ध में था। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता में जीवित जला दिया जाता था। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, और उनके ही ये प्रयास थे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को कानून बनाकर समाप्त कर दिया था, और महिलाओं की शिक्षा को समाज सुधार का आधार भी इन्होंने माना था। ये मानते थे कि शिक्षित महिला ही परिवार और समाज को सही दिशा दे सकती है, और आधुनिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा का भी इन्होंने काफ़ी समर्थन किया। आपने जो अभी कहा वो सही कहा कि समय समय पर ऐसे अनेक महापुरुष समाज सुधारक हमारे भारत में हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। आज अगर हम महिलाओं को हर फील्ड में देखते हैं, पहले पायदान पर देखते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं न कर सकती हो, तो इनके पीछे इन महापुरुषों का ही योगदान माना जाता है।
0: सही है, और उन्होंने समाज में व्याप्त बाल विवाह, बहुविवाह यानी कि एक से अधिक शादी करना, पत्नियां रखना और पर्दा प्रथा का भी कड़ा विरोध किया था, क्योंकि ये कुरीतियां महिलाओं को बहुत पीछे धकेलती थी, और विधवा पुनर्विवाह और संपत्ति का अधिकार जैसी कुरीतियों पर भी जैसी चीजों पर भी इन्होंने काम किया। राजा राम मोहन राय ने विधवाओं की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई और उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और आज के समय में तो हम देखते हैं कि जो माता पिता की संपत्ति है उसमें महिलाओं का अधिकार बराबर का माना जाता है, तो ये सब जो काम हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं इन जो मनीषियों ने काम किया है वही आगे जाकर हमको उसका फल मिला है। तो आज हम सभी महिलाएं बहुत शुक्रगुजार हैं, हम बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे अग्रदूतों को जिनकी वजह से आज हम जो है इस स्थिति पर पहुंचे हैं।
1: आपको जब आप राजा राम मोहन राय के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं अपनी सखियों को ये भी बता दूं कि 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, और इस संस्था ने समाज में फैली कुरीतियों के विरोध और महिला सुधार के कार्यों को भी आगे बढ़ाया था। भारतीय समाज में नारी जागरण की नई चेतना उत्पन्न की, उनके प्रयासों से महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और अधिकार प्राप्त करने की दिशा मिली थी, इसलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और नारी सुधार आंदोलन का महान नेता भी कहा जाता है।
0: और आज उनका जन्मदिन है, तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अग्रदूत जो है वो हर हर समय हमारे यहाँ पर पैदा हो, हमारे देश ने कई ऐसे अग्रदूत को जन्म दिया है जिन्होंने देश के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और महिलाओं के लिए काम करने वाले ऐसे समय समय पर जब मनीषी आते हैं तो उससे महिला जो सशक्तिकरण है वो और भी ज्यादा आगे हो जाता है। तो सुधा बातें हम करती रहेंगे, आइए लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और सुधा अब ले चलते अपनी सखियों को गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते एक प्यारा सा गीत।

फिल्म अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों का ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे जसविंदर नरूला की आवाज में। सुधा, हम औरतों की एक आदत होती है कि हम, हमारे पास जितना भी खर्चा हमको घर खर्च के लिए दिया जाए, हम उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाते हैं। और बचाने की जो आदत है वो इंसान की सबसे अच्छी आदत होती है, क्योंकि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो उस समय अगर हमारे पास बचत हो तो वो हमारे बहुत काम आती है। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण तो हम देख ही चुके हैं कि कोरोना के समय हम लोगों की क्या हालत थी। लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के पास पैसे थे नहीं घर खर्च चलाने के भी। उस समय महिलाओं ने अपनी बचत से बहुत कुछ काम निकाले। तो बचत की एक आदत जो है वो

0: हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि किस समय क्या इमरजेंसी आएगी हम नहीं जान सकते। लेकिन अगर हम अपने रोज वाले खर्चे में से थोड़े थोड़े बचाते हैं तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो हम तैयार कर सकते हैं।
1: एकदम सही कहा आरती। कोरोना को तो बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। कोरोना के समय तो हम सब की अंटियां ढीली हुई थी और जो भी पैसे इकट्ठे किए वो तो सबके लगभग सब बहनों के निकले ही थे। तो बचत करना तो जैसे कोई हम महिलाओं का एक कहते हैं ना कि शौक बन गया है और हम बचत करते हैं। लेकिन आर्थिक बचत केवल पैसे जमा करना नहीं बल्कि सुरक्षित तो और सुखद भविष्य की तैयारी है। छोटी छोटी ये जो बचते हैं वो समय के साथ ही बड़ी पूंजी बन जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को बचत की तो आदत अपनानी ही चाहिए। सबसे पहले अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखना चाहिए। अनावश्यक जो खर्चे हैं उनसे हमें बचना चाहिए और जरूरत की जो चीजें हैं उन पर ही पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन वो भी सोच समझ कर। अर्थ यदि हम रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं तो महीने के अंत में अच्छी जो रकम है वो जमा हो सकती है। बच्चों को भी गुल्लक में पैसे डालने की हमें आदत सिखानी चाहिए और बचत हमें कठिन समय में सहारा देती है। बीमारी, शिक्षा या किसी भी आपात स्थिति में बचाया हुआ धन बहुत काम आता है। आज के समय में बैंक, डाकघर और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित बचत करना भी आसान हो गया है। और हमें ये भी समझना होगा कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, इसलिए छोटी बचत को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि हर व्यक्ति बचत को अपनी आदत बना ले तो इसका भविष्य और अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। और आरती एक बात और है कि मैंने तो ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत जो एक अनुभव बता दूं कि जब हम बचत करते हैं ना तो एक आत्मनिर्भरता भी हमारे अंदर आती है कि हमें जो घर खर्च के लिए पैसे दिए गए थे उसमें हमने इतने पैसे बचाए हैं, तो एक मन को सुकून मिलता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम भी थोड़ा थोड़ा करके और पैसा इकट्ठा कर सकते हैं।
0: सही कहा सुधा आपने। और आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोगों में तो देखिए जनरली हम ऐसा देखते हैं कि औरतें जो है वो बचत करती ही हैं, लेकिन फिर भी आजकल कई महिलाओं में ऐसी भी आदत है कि वो कोई भी रुपया नहीं बचाती। हालांकि कई महिलाएं देखिए पुरुषों के बराबर काम करती हैं पूरे समय, लेकिन फिर भी वो अपना जो सारा रुपया है वो खर्च कर देती हैं। इसका कारण मेन ये हो सकता है कि आजकल हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं कई बार ये हमारे अनावश्यक खर्च के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि इनमें जब हम कई चीजों को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये भी ले लें ये भी ले लें, भले उस चीज की हमें जरूरत हो नहीं हो, लेकिन अगर सेल में कोई चीज दिखाई देती है तो हम वो चीजें फट से खरीदने की देखते हैं। तो कई बार इसकी वजह से हम अनावश्यक खर्चे कर देते हैं, और कई बार अगर हम दूरदर्शिता नहीं रखें, आगे के लिए नहीं सोचें और इस तरीके से रुपए खर्चते रहे, तो आगे जब कभी भविष्य में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ही को दिक्कत आएगी। इस चीज को हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी है, उनको ये समझना जरूरी है कि बचत जो है, ये आदत जो अपनाते हैं, उनको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होती है। अब कई बार महिलाएं ये सोचती है कि अगर हम बैंक में रखेंगे तो हमारा पैसा खर्चा ही होगा, लेकिन आप भले देखिए सबसे अच्छा है कि बैंक में आप जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो बैंक में जमा करना तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं चाहते कि आप अपना रुपया बैंक में रखें, तो आप जो भी अमाउंट थोड़ा थोड़ा है उसे आप घर में ही ऐसी जगह रखिए कि भाई आपको पता रहे, और इस तरीके से जब आप इकट्ठा करते हैं तो जब कभी हमारे घर परिवार को जरूरत है, हमें जरूरत है, तो एक मुफ्त राशि जो है हमें मिलती है, और उससे हमारे काम जो है बहुत आसानी से निकल जाते हैं, और अपने आप में ये भाई कॉन्फिडेंस हमें रहता है कि भाई हमारे पास पैसा है और अगर हमें दिक्कत होगी तो हम इस पैसे को काम में ले सकते हैं। तो महिलाओं की जो ये आदत है, ये न सिर्फ महिला में बल्कि बच्चों में, छोटे बच्चों को भी हमें आदत डालनी चाहिए कि भाई तुम एक गुल्लक बनाओ उसमें रुपए इकट्ठे करो, और पुरुषों में भी होनी चाहिए, लड़कों में भी ये आदत होनी चाहिए, सभी को ये आदत डालनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी पैसा हमें कहीं से भी मिल रहा है उसमें हमें थोड़ी थोड़ी बचत करनी है।
1: एकदम सही कहा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो आपने एक पॉइंट बोला उसकी तरफ मैं अपनी सखियों का विशेष ध्यान दिलवाना चाहूंगी। ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला आरती आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है और इतने आकर्षक विज्ञापन और इतने लुभावने तरीके से ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, विशेष करके हमारी बहनों को कि ये ऑफर चल रहा है या इतने परसेंट की छूट चल रही है। तो मैंने अपने आसपास भी कई महिलाओं को देखा है जो ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में बिना बात का सामान मंगवा लेते हैं। बचत करने से पहले सखियों एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने मौज या शौक में कई बार कई वस्तुएं ऐसी खरीद लेते
0: या
1: हैं।
0: हमें सुधा शायद लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमें ये सामान मंगाना है, ये नहीं मंगाना है, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए शायद।
1: सही है, क्योंकि कहते हैं ना कि पहले से ही अगर हम सोच समझ कर लिस्ट बना देते हैं कि ये
0: प्लानिंग

0: करके काम करते तो बढ़िया होता है,
1: तो हर काम ही अच्छा होता है। तो सखियों आप भी बचत अगर करती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं तो बचत करके देखिए, क्योंकि आती मुझे तो बचत जो मैं करती हूँ उससे मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि नहीं मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं भी घर में कभी कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर अपना
0: अपना
1: थोड़ा भी
0: योगदान हम दे
1: योगदान लेकिन
0: सकते
1: दे
0: हैं।
1: सकती हूँ। जैसे हमने कोरोना में दिया या परिवार में ऐसी कई सिचुएशन आई जब हमारा पैसा जो है वो काम आ जाता है, तो कई बार अलमारी में कपड़ों के नीचे, कभी तकिए के नीचे, कभी बिस्तर के नीचे, कभी किचन
0: यहाँ तक कि
1: में
0: किचन
1: सेल्फ
0: में
1: में
0: डब्बों में
1: डिब्बों
0: भी
1: के
0: लोग
1: अंदर
0: रुपए
1: भी
0: इकट्ठे करते
1: इकट्ठे
0: हैं।
1: कर देते हैं। तो
0: हाँ
1: ये छोटे छोटे जो बिखरे हुए पैसे होते हैं जब ये इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है मन को।
0: और जब अचानक से कभी हमारे हाथ में आते तो
1: हाँ
0: उसकी खुशी और भी होती
1: खुशी
0: है कि अरे ये
1: और
0: पांच
1: भी
0: पांच सौ के नोट मिल गए या दो दो
1: बहुत
0: सौ के,
1: ज्यादा
0: तो
1: खुशी
0: एक
1: होती
0: अलग
1: है।
0: ही खुशी उसकी मिलती है।
1: हाँ
0: तो सखियों हमारी बातें यूं ही चलती रहेगी, आइए ले चलते हैं आपको एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में और सुनते ही प्यारा सा गीत।

जाने ये परवाने होते हैं दीवाने, कोई जाने कोई ना जाने ये परवाने होते हैं दीवाने।

न सोच न कैसा जो दिल ही दे काला, जोगी ने तो है पहन ली प्रेम की ये माला, जोगी ने तो है पहन ली प्रेम की ये माला।

और प्यार हो गया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खान, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। और अब लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आरती, अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम अपनी सखियों को ऐसी कई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होती है। तो सखियों, ऐसी ही एक योजना के बारे में हम आज बात करेंगे, मिशन इंद्रधनुष। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान है जिसको 2014 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण की सुविधा पहुँचाना है जो नियमित टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। और पता है, इस अभियान का नाम इंद्रधनुष इसलिए रखा गया क्योंकि यह सात रंगों की तरह कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं और इस अभियान में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और टीकाकरण निश्चित करते हैं। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे। और मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ भारत का निर्माण करना और सखियों, शिशु मृत्यु दर को भी कम करना है। और ये अभियान बच्चों के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपके आसपास भी या घरों में बच्चे अगर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तो आप भी आगे से आगे इस मिशन इंद्रधनुष के बारे में अपने आसपास के लोगों को जानकारी जरूर दीजिए ताकि हम शिशु मृत्यु दर को भी कम कर सकें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें।
2: सही कहा सुधा आपने। और टीकाकरण कितना जरूरी है हर एक इंसान के लिए तो हम जानते ही हैं, क्योंकि एक समय था कि जब टीके नहीं थे तो लोगों को आए दिन बीमारियां हो जाती थी और फिर उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता था। खासकर हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे पोलियो जो बीमारी थी ये बहुत ज्यादा फैली हुई थी, लेकिन जब से टीकाकरण

कई अभियान शुरू हुए हैं, इन सब बीमारियों से हम मुक्त होते जा रहे हैं, और खासकर पोलियो से तो हमारा देश है वो काफी हद तक, या यूं कहूं कि पोलियो मुक्त हो चुका है। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है, इसके द्वारा भी सरकार का यही उद्देश्य है कि भाई 7 तरीके की जो बीमारियां हैं ये, इनसे हमें मुक्ति मिल सके, और बच्चों को समय पर यदि ये टीके लगाए जाते हैं तो कभी भी ये बीमारियां उनको नहीं लगती। तो सभी बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा या आसपास भी कोई है जिनको इसकी जानकारी नहीं है, तो उन्हें जरूर दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा इस अभियान से अछूत नहीं रहे और सरकार के द्वारा चलाया गया ये अभियान जो है ये सफल हो सके। तो सखियों, एक बार फिर से चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते एक प्यारा सा गीत।

0: दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में।
1: आरती, हम अपनी ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि जब भी आरती हमारा कोई अच्छा काम कर देता है, हमारी हेल्प कर देता है, तो हम उसे धन्यवाद या शुक्रिया कहते हैं। तो शुक्रिया एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। धन्यवाद कहना अच्छे संस्कार और विनम्रता की पहचान है। तो सखियों, जब हम किसी के सहयोग, प्रेम या सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो रिश्तों में भी अपनापन और सम्मान बढ़ता है। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों, मित्रों और उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। एक सच्चा शुक्रिया सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और मन में खुशी भर देता है। आभार व्यक्त करने की आदत हमें सकारात्मक सोच सिखाती है। यह न केवल दूसरों को सम्मान देती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाती है। इसलिए जीवन में छोटी छोटी मदद के लिए भी दिल से शुक्रिया कहना सीखिए, क्योंकि यह एक ऐसा गुण है जो इंसान को महान बनाता है। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हमारा काम करता है आती, या जब भी कोई हमारी हेल्प करता है और हम उसे जब बड़े प्यार से धन्यवाद या शुक्रिया कहते हैं, तो एक अपनत्व की भावना आती है और बड़प्पन की भावना आती है। सामने वाले को भी लगता है कि मैंने कुछ भी अगर किया है या कोई हेल्प की है तो मेरा एहसान तो कम से कम माना जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे स्वार्थी होते हैं कि अपना बड़े से बड़ा काम निकलवा देंगे, लेकिन दो शब्द जो है उनसे नहीं कहे जाते हैं कि धन्यवाद कह दें या शुक्रिया कह दें। तो आरती, आपका इस शुक्रिया के बारे में क्या कहना
0: है? सही कहा सुधा आपने कि शुक्रिया जो है ये एक सकारात्मक आदत है और ये लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने और सकारात्मक माहौल पैदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अगर आपका कोई काम कोई कर रहा है तो उसके प्रति कृतज्ञता हमें जरूर दिखानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग यूँ कहते हैं कि रिश्तों में कोई शुक्रिया कोई सॉरी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब हम थोड़ा सा अगर किसी को भाई थैंक्स देते हैं कि भाई आपने मेरा काम कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तो उसका एक अलग ही असर रहता है, चाहे वो अपने हो चाहे कोई दूसरे हो। लेकिन एक बार जब मन से हम किसी का धन्यवाद देते हैं ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। और भले कोई ये कहे कि भाई अपनों को नहीं, लेकिन अगर हम अपने अपनों को ही कभी नहीं कहते, उनकी हेल्प के लिए उनको धन्यवाद नहीं देते, तो उनको भी मन में कहीं ना कहीं ये बुरा लगता है। एक्चुअली होता ये है सुधा कि हम जब किसी का कोई काम करते हैं और सामने वाला हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उनका काम समय पर कर दें या कुछ ऐसी उन्हें ज़रूरत है तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिसने मदद की है उसका धन्यवाद ज़रूर दिया जाए। क्योंकि एक शब्द बोलने से होता कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो असर है वो काफी गहरा होता है। तो शुक्रिया कहने की आदत हर इंसान में होनी चाहिए और एज अ पेरेंट्स हमें भी अपने बच्चों को ये आदत सिखानी चाहिए कि भाई जब कभी कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, तो उसको शुक्रिया जरूर कहें।
1: तो आरती, जो भी तुमने बच्चों की बात की उससे मैं आपको एक चीज और हमारी सखियों को बता दूं कि बच्चों को तो हमें सिखाना ही है कि वो शुक्रिया कहें या धन्यवाद कहना सीखें, लेकिन कई बार जब बच्चे घर का काम करते हैं या कोई छोटा मोटा हमारा सहयोग कर देते हैं, तो हमें बच्चों को भी शुक्रिया कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उनसे बच्चों में भी एक बड़प्पन का भाव आता है और
0: उनको मोटिवेशन भी मिलता है काम करने के लिए। जैसे हम ये सोचते हैं कि चलो हमारा ही बच्चा है, हमें इसको क्या शुक्रिया कहना, लेकिन जब हम उनको ये थैंक यू कहते हैं ना, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अरे मुझे थैंक यू काम है, फिर ये काम करूंगा, इनकी हेल्प करूंगा, ऐसा एक फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर बहुत। और बच्चे तो देखिए बड़ों से ही सीखते हैं, अगर हम बड़े नहीं बोलेंगे तो बच्चे भी नहीं बोलेंगे, तो बच्चों को सिखाने के लिए हमें बात बात पे उन्हें शुक्रिया कहना ही पड़ेगा, तभी बच्चे जो है उनमें ये आदत पड़ेगी और भविष्य में उन्हें भी अगर किसी को शुक्रिया कहना होगा तो वो उसमें शर्माएंगे नहीं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थैंक यू और सॉरी बोलने में भी शर्म आती है, तो अगर आपकी किसी ने हेल्प की या आपसे कोई गलती हो गई तो थैंक यू और सॉरी बोलने की आदत हम लोगों की होनी ही चाहिए।
1: तो आती अभी तो हम अपनी सखियों का भी शुक्रिया करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को इतना मन से सुनते हैं और हम उनको संगीत की दुनिया में ले जाते हैं, कुछ खूबसूरत से नगमे तराने सुनाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी सखियों को फिर एक खूबसूरत और प्यारा सा गीत सुना दें।
0: तो ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुधा, पहले के समय में लोगों के पास डॉक्टर नहीं होते थे, डॉक्टर के लिए दिखाने के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, तो उस समय भी लोग घरों में कई तरीके से इलाज करते थे। और हमारी जो दादी नानी हैं, इनके यहाँ तो देखा जाए तो डिलीवरी भी लोगों की घरों पर ही होती थी, तो उनके पास कई ऐसे खजाने होते थे जो छोटी छोटी बीमारी को बहुत आसानी से घर पर ही ठीक कर देते थे। लेकिन ये दादी नानी के जो नुस्खे हैं वो आज के लोगों में, आज के समय में लोग जो है अपनाते नहीं हैं। लेकिन अगर हम इन नुस्खों को अपनाएं तो हमें जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और छोटी मोटी बीमारी का इलाज जो है वो हम खुद भी घर पर चुटकियों में कर सकते हैं। तो आज दादी नानी के नुस्खे में हम अपनी सखियों को क्या बताएंगे सुधा?
2: आरती, दादी नानी के नुस्खे हमारे पारंपरिक ज्ञान का खजाना है और ये घरेलू उपाय काफी सरल, प्राकृतिक और अक्सर बहुत प्रभावी भी होते हैं। और पुराने समय में तो जो अभी आपने कहा कि छोटी मोटी समस्याओं का इलाज भी घर की रसोई में मिल जाता था, और हालांकि धीरे धीरे ये गुम हो रहा है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो इन घरेलू नुस्खों पर काफ़ी अमल करते हैं और ये काफ़ी फायदेमंद तो है ही, लेकिन साथ में आती एक बात ये भी है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो
1: और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनसे तुरंत राहत भी
2: मिल जाती है। जैसे अगर सर्दी जुकाम है तो अदरक तुलसी और शहद वाली चाय पीने से राहत मिलती है, और गले में खराश है तो अपन आमतौर पर हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करते ही हैं, उससे भी फायदा होता है। और खांसी में भी हल्दी वाला दूध पीना लाभकारी है, और अगर पेट दर्द होता है तो अजवाइन और काला नमक खाने से भी आराम मिलता है, और थकान दूर करनी है तो नींबू पानी या गुड़ का सेवन करना चाहिए। पता आती जब हम छोटे थे और हमारे कोई चोट वगैरह लग जाती थी ना, तो हमारी दादी क्या करती, आटे के अंदर हल्दी और तेल डालकर उसको गर्म करके और उस जगह पे बांधती थी, तो एकदम
1: हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो जल्दी सही करती है।
2: और अगर हम कोई भी चीज़ देख ले, जैसे आजकल हमारी सखियाँ अपने सौंदर्य को लेकर काफ़ी सचेत रहती है, तो उसमें भी बेसन है, मुल्तानी मिट्टी है, शहद है, नींबू है, गुलाब जल है, खीरा है, ये ऐसी वस्तुएं हैं हमारे किचन की जिनसे अपने सौंदर्य को भी निखारा जा सकता है। और नारियल तेल बालों में डालकर और जो दो ऐसे ऊपर टाइट चोटी करते थे उससे बाल भी हमारे बहुत लंबे होते थे,
1: बढ़ते भी थे।
2: तो ये दादी नानी के जो नुस्खे हैं ना, ये पारंपरिक भले ही है सखियों, लेकिन इनका फायदा बहुत होता है और साइड इफेक्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ अगर मान लो सूट नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा,
1: नुकसान की तो खैर गुंजाइश ही
2: नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
1: और अब देखिए ना कि जैसे प्याज हम गर्मी के मौसम में खाते हैं, तो अब प्याज के कितने सारे फायदे हैं। अगर प्याज खाते हैं तो हमें लू नहीं लगती, प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से उल्टियां अगर किसी को आ रही है तो वो तुरंत बंद हो जाती है, और प्याज का रस लगाने से मस्सों के छोटे छोटे टुकड़े होकर जड़ से गिर जाते हैं। तो मस्सों की समस्या तो काफी लोगों को होती है, क्योंकि पेट की गर्मी की वजह से मस्से अक्सर लोगों को निकल जाते हैं। तो उधर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्याज का रस लगाइए तो धीरे धीरे वो जड़ से निकल जाएगा। और मसालेदार खाना खाएं, मसालेदार खाना आपकी बंद नाक को तुरंत ही खोल देगा। अगर किसी की नाक बंद हो जाती बार बार तो अच्छा मसालेदार खाना खाने से भी जो नाक बंद है वो खुल जाती है। और देखिए ना कि आज के समय में लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन पहले जब लोग बाहर जाते थे और स्किन काली हो जाती थी तो आलू को छील कर उसका जो रस है वो त्वचा पर लगाते थे, तो उससे जो टैनिंग है वो साफ हो जाती थी। या पपीते का रस लगाइए, पपीते को अच्छे से रगड़ी उस जगह पे तो भी आपकी टैनिंग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो हमारे किचन में, हमारे घर में सारे इलाज हैं, बस जरूरत है थोड़ा सा इन चीजों को जानने की और अवेयरनेस रखने की। अगर आपको कोई कुछ उपाय बता रहा है तो इन उपायों को करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट नहीं होते और इससे कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि हमने जो उपाय अपनी सखियों को बताए हैं, ये नुस्खे जो बताए हैं, ये भी इन पर अमल करेंगे। और हम एक बार फिर से चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी और प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मुंबई। अब प्रस्तुत है मिड डे न्यूज और इसी के साथ 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: The Delhi High Court today granted 3-day interim bail to Umar Khalid in the UAPA case linked to the alleged larger conspiracy behind the 2020 Northeast Delhi riots. A division bench of Justice Pratibha M. Singh and Justice Madhu Jain allowed his release from June the 1st to June the 3rd on strict conditions. The High Court said it was taking an empathetic view of the matter and granted interim bail for 3 days to allow Khalid to spend time with his mother. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on the 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said, in keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on the 1st of July last year. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana and Andhra Pradesh during the next 2 days. IMD has forecast hot and humid weather over Gangetic, West Bengal and Odisha till tomorrow. The weather agency also forecast heavy rainfall in parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and south interior Karnataka till tomorrow. The weather in Himachal Pradesh has changed its course today and intermittent rainfall has been continuing at several places across the state since morning. This change in weather has brought some relief to people from the intense heat.
1: Light rainfall has been recorded in various districts including the state capital Shimla as well as Chamba, Kangra, Kullu, Hamirpur and Lahol Spiti, leading to a slight drop in temperatures across the state. According to the Meteorological Center Shimla, this change in weather is due to the activation of a western disturbance. The center has issued an orange alert for heavy rain accompanied by thunderstorms and strong winds at multiple locations in 7 districts, Kullu, Shimla, Chamba, Una, Hamirpur, Mandi and Bilaspur over the next 48 hours. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Line Kjærfeldt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. Chaliha's exit India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent, 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's 3-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
3: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
3: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
4: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
2: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
6: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को

0: और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठी को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से हम बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से लेकर 5:30 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों को हम रिले करेंगे मुंबई के आकाशवाणी केंद्र से।
4: भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सचिव बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपा कली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: प्यार में देखो शर्माना बुरी बात है,
1: चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है, चुरी चुरी दिल का लगाना बुरी बात है,
0: दिल को लगा के पछताना बुरी बात है, चुरी चुरी

0: घर से
1: आहों से दिल को जलाना बुरी बात है,
0: चोरी चोरी दिल का लगाना बुरी बात है,
1: चोरी चोरी दिल का
0: लगाना बुरी बात है,
1: दिल को लगा के पछताना बुरी बात है।

0: ना शाद ने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई बहाने चली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती है। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी, मैं रंजीता जांगड़े, दिल्ली तरह छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, उन लोग को नाश्ता कराना। ये
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकरी का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और इसकी सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज।
0: जी, क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: खाने दाल छेलियो।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंस

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनट वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती। ब्यूटीशियन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ जो लाइन आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, मेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।
2: मैंने रख ली जान हथेली पे,
3: मैं सत पे प्रेम पर।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ। बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर के क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम ले वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है।
1: हाँ,
0: जी, तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले, चाहे कोई पतीला ले, उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक
0: जी।
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड, जिस पे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है
0: जी
1: हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है मीन्स की केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का, डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मातृया, मेरी अम्मा, अम्मा नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सबकी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारी विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई है बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया अभी आएगा।
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम ए इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आप।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक है, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी ये बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती है अपने आप। तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स जो है अम्मा बाबू जी, तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है,
1: हाँ,
0: कहीं
1: हाँ,
0: भी बैठे
1: हाँ,
0: रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई।
1: हाँ,
0: लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, यानी सब कुछ। सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ना, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हमेशा।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग
1: हाँ
0: जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ और सभी

0: अरे हमारे देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 50+ हो गए हैं, तब
1: जी
0: भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
1: क्या
0: मेरा
1: बात,
0: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ। तो
1: क्या
0: ये
1: बात है।
0: सबको किसका, हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
1: क्या बात है
0: मैं तो एक्चुअल मैं 63 ईयर्स की हूँ अभी,
1: जी।
0: और मतलब मुझे हर दिन जीने में बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले। इसे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
1: जी
0: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
1: क्या बात
0: मतलब
1: है
0: फ्री है एकदम। तो
1: जी,
0: मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं ये सबके लिए, कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
1: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा
0: हाँ,
1: अच्छा
0: ये सब
1: लगा।
0: मेरी बेटी की मैरिज जो है वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
1: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: रह सकता तो चुप रहता, पर चुप रहना मुश्किल है। चुप रह सकता तो चुप रहता, पर चुप रहना मुश्किल है। आंखों से मन की बात समझ ले, मुंह से कहना मुश्किल है।
1: मैं बोली क्या जानू आपकी ये बोली हो बोली।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई, है ना अनु जी?
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा,
0: जी
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आपने ही पसंद का गाना सुनवाइए, नाम घूम जाएगा।
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम घूम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाए, मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के, जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।

0: मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है जी. और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए. और मेरी सास का नाम सुमन है
1: जी.
0: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है. और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
1: जी.
0: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा. ये है मेरा समस्त परिवार.
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा. अपने पतिदेव को हमारी तरफ से वेद भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा. आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1 2 4 माय नेम इज लखन.
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना.
2: मैं हूँ मन मौजी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी. 1 2 4 4 2 1 माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन. ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मौजी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी. 1 2 4 4 2 1 My name is Lakhan. My name is Lakhan.

0: पता पता है चंदा
1: पता है चंदा
0: सूली पे लटका हर एक बंदा सबके गले में माया का फंदा सीखो ओ यारो

0: बोल मीठे बस बोल के हर माल बेचो कम तोल के रे बाबा कम तोल के हम अपनी खाली जेब भरो जी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी बंटू का बोल छोटू का बन माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
1: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
2: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं।
1: जी, आपका नाम क्या है?
2: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
1: अशिया नाज बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
2: बिहार अच्छा ये राज्य है
1: जी,
2: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
1: अशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती है, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
2: जी, सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
1: क्या बात है आप, तो चलिए अशिया जी बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
2: हिना फिल्म का है।
1: हिना फिल्म का,
2: और गाने का बोल है मैं खुश हूँ।
1: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दर्शा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दर्शा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी,
1: मेरे भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो सहेली और ये तो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं, समाज के निर्माण सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो सुनते हैं रेडियो, जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी।
1: तो वो बोलते कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का वादियां मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली ने फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और

0: बहुत खुशी मिलती है।
1: क्या बात है। तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
0: ये पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, छाया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
1: क्या बात है।
0: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता, मराठी में लिखती हूँ
1: जी,
0: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
0: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
1: जी
0: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
1: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
0: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उच्च पर
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002462, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
2: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे

अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं, और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं, या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा

चार घड़ी का डेरा था, सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़

तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें,

0: चल उड़ जा रे पंछी।
1: आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपने बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

0: रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर दो, समझौता गमों से कर दो, समझौता गमों से कर दो, समझौता गमों से कर दो।
1: मगर ऐसा नहीं था, वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में ना सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जा यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसकने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम रखती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो यह है कि किसी ने उसकी तरफ

अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से

राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के की कटोरी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

नाम से शर्माती है जिंदगी आज मेरे नाम।

0: आज मेरे नाम से शर्माती है।
1: पर तुम मरना क्यों चाहती है? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी

है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

जिंदगी हर कदम एक नई यज्ञ है, जिंदगी हर कदम एक नई यज्ञ है, जिंदगी हर कदम।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरील का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इस दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

0: संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितनी अच्छी

खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुकमणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुकमणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल है। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुकमणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुकमणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुकमणी स्टेज पर पहुंची।

घायल परिंदा है तू, इकला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी चुनू के आगे अंबर पड़ा।

Adiós.

0: रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती है जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए। लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सके। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल की काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
1: इंसाफ की नगर पे बच्चों दिखाओ चल के।

0: के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना,
1: दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना,
0: सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना,
1: सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना,
0: रख दोगे कि दिन

0: चल के तेरे सिर पे तुम्हारा नेता तुम्ही हो गल के।
1: गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारी प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन।

FM बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पद्म अवार्ड से सम्मानित एन राजन से बातचीत।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एम राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है।

0: और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा। अम्मा जी, आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
1: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
0: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
1: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे। तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं। तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
0: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
1: डर।
0: हाँ, मन में डर जो होता है,
1: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
0: क्या बात है।
1: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो हम अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते है तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रही। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
0: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
1: बिल्कुल सहज रूप।
0: क्या बात, बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
1: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था ना, उसमें 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था। फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
0: जी जी,
1: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल OB केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
0: अच्छा।
1: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था। तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर हो जाती थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया तो

0: दिस वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा,
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी, तो मेरे मन में आया ये विचार। मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से, संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ। और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉल्यूम में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया। मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया, हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है, उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधकों निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी जी,
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल
0: हम,
1: ऐसा
0: हम,
1: है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को, तो बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे, या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का छुआ का फुल का झगड़ा किस बात पे होता था? मिठाई को लेके होता था या वायलिन?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वॉयलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वॉयलिन में, इंस्ट्रूमेंट में? अच्छा, मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी। इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी, वॉयलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो

0: खराब होता है, वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी,
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी बात करते हैं माजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्ला खान साहब के साथ जो जुगलबंदी, वो बहुत ही पॉपुलर थी।
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
0: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
1: बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे, वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली
0: जी।
1: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
0: था। बिल्कुल सही कहा,
1: लोगों को
0: जी।
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए।
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
1: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर पढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है
0: जी, जी।
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
0: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में
0: जी, बिल्कुल।
1: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो वो पूछा इतने में करोगी तुम? कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में जैसे

0: एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था और आवाजें हो रही थी लोग वहां। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा, तो उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो ये हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रहे हैं कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत ही यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी लेकर करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल भैया, तो मैंने सोचा आज भी डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराज देश बचाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो गुजराती हो मराठी हो सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एक लव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एक लव्य का, तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती है?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नंदी राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
2: हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। इस समय शाम के 5:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवा सुनने वाले सभी युवा साथियों को युवा पुष्पेंद्र बोहरा का युवा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर। हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर घटित जैव विविधता और प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता है। यह प्रकृति को संतुलित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। दुनिया के भोजन के 80% हिस्सों पर पौधों से आता है। लगभग 30 अरब लोग प्रोटीन के लिए समुद्री जीवों पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार 29 दिसंबर 1993 को यह दिवस मनाया गया, क्योंकि इस दिन जैव विविधता पर कन्वेंशन लागू किया गया।

बाद में 2001 को संयुक्त राष्ट्र ने इस तारीख को 22 मई कर दिया और तब से यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसे देखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं यह संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं भीषण गर्मी से बचने पर। दोस्तों, भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखें और धूप से सीधे संपर्क से बचें। हल्के ढीले सूती कपड़े पहने और दिन में बार बार नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और सादा पानी पीते रहें। तरबूज, खीरा जैसे पानी से भरपूर फल भी खाए जा सकते हैं। इसके अलावा दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। अपनी डाइट में नींबू पानी, लस्सी और आम पत्र जैसे पेय पदार्थों को शामिल करें। तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे मौसमी फल खाए जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। हमेशा हल्के रंग और ढीले ढीले सूती कपड़े ही पहने ताकि हवा आसानी से पार हो सके। जब भी बाहर निकले तो धूप का चश्मा, चौड़ी किनारी वाली टोपी का इस्तेमाल करें और चेहरे को सूती दुपट्टे से ढकें। तेज धूप में निकलने से 15-20 मिनट पहले अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के समय खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें और पर्दे डालकर रखें ताकि धूप अंदर ना आए। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच धूप सबसे तेज होती है, तब घर से बाहर निकलने से बचें। अगर किसी को लू लग जाए तो तुरंत किसी ठंडी जगह या छांव में चले जाएं। अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए ठंडे पानी से स्पंज करें और सामान्य पानी से नहलाएं। ORS का घोल या नमक चीनी का पानी पिलाएं। ज़्यादा खराब होने पर, चक्कर आने पर तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथियों, अपनी चर्चा को हम ऐसे जारी रखेंगे, उससे पहले यही सुनते हैं यह गीत।

साथियों भी सुनने फिल्म बॉम्बे से तू ही रे, जैसे गाया है हरिहरन और कविता ने और संगीत ए आर रहमान ने। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं अनुशासन में रहने पर। दोस्तों अनुशासन मानव जीवन का एक आधार स्तंभ है जिस पर व्यक्ति अपनी सामाजिक सफलता की इमारत खड़ी करता है, साथ ही समाज में सम्मान स्थान भी प्राप्त करता है। अनुशासन जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और शांति की कुंजी है। साथ ही चर्चा को इसी तरह रखेंगे, उससे पहले सुनते हैं यह गीत।

साथियों, अभी हम सुने थे फिल्म धड़कन से दिल ने ये कहा है, जिसे अजित नारायण अलका याग्निक ने और संगीत दिया है नरीब सरोन ने। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अनुशासन के महत्व पर। दोस्तों, अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति की कुंजी है। हम इसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। चाहे व्यक्तित्व जीवन का हो, सामाजिक हो, अनुशासन के बिना कोई भी चीज़ें व्यवस्था सुचारू रूप से चलती नहीं है। इसलिए हमें बचपन से ही अनुशासन के महत्व को समझना चाहिए और इसके अपने जीवन को अभिन्न अंग बनाकर एक सफलता सुखी और सार्थक जीवन जी सकें, इसके प्रयास करना चाहिए। साथियों, अब समय आ चला है अपने युवा दोस्त पुष्पेंद्र भारव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 का समय रहेगा जिले की चिट्ठी का। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 6:45 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

श्रोताओं, रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 11 बजे और 11:05 पर आप सुनेंगे पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार।

श्रोताओं, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे जोधपुर दिल्ली वंदे भारत जैसलमेर साबरमती विस्तार कोच कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन की रिकॉर्डिंग। प्रस्तुत करता होंगे भरत व्यास। रात्रि 8:30 का समय रहेगा सुगम संगीत का। शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 6:15 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं, किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: इस मन में बसा करना, इस तन में

नारायण बिन नाम के पंडित पशु समान, ताते अति मूरख भलो।

एक बार झुक गया तो माँ, एक बार झुक गया तो।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। जयपुर में होने वाले रोजगार मेले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। वहीं अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के तहत BSF की सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को शामिल कर अगले एक वर्ष के भीतर अभेद्य सीमा सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के साथ

0: सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियनों और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब ये सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अदालत के आदेश पर पहले राज्य सरकार को चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। नगरीय विकास मंत्री झाबरमल खल्ला ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एक वक्तव्य में श्री जूली ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3 सीट सहित 10 राज्यों की 24 सीटों के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन 24 सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त हो रहा है। इनमें राजस्थान से चुने गए राज्यसभा के 3 सदस्य नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। इन चुनावों के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन 8 जून तक भरे जाएंगे, वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 तारीख को होगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की मंत्री बैठक चल रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। अब से कुछ देर बाद राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देंगे। करीब 3 महीने बाद हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक को कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल की आधारभूत संरचना का काम तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्टेशनों को नया और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। श्री वैष्णव आज जालौर में भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे राज्य में कई रेल परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है।
2: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीपुर की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनड़ी की डबलिंग आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
1: श्री वैष्णव ने भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन भीलड़ी, जालौर, लूनी और जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इससे जालौर वासियों को पहली बार दिल्ली तक के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। श्री वैष्णव अब से कुछ देर बाद पाली पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इससे पहले रेल मंत्री ने आज सुबह जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ संचालित हो रही थी। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने समृद्ध जैव विविधता को सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति मनुष्य के मन में कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है।
3: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो यह हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
1: जैव विविधता दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा की ओर से विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, साथ ही उन्हें जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में सरकारी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पौधे रोपे गए और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। पाली में भी पर्यावरण संरक्षण शपथ, पौधरोपण और जल संरक्षण सहित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। देश भर में 1 अप्रैल से लागू हुए आयकर कानून को लेकर शुरू किए गए देशव्यापी जनजागरूकता अभियान प्रारंभ के तहत आज जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद कर नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही विभाग की ओर से लाए गए विभिन्न टूल्स के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि नया आयकर अधिनियम छोटा और सुगम है, जिसमें पुरानी सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।
4: ये नया अधिनियम जो है ये पुराने की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं, जिसमें कि चैटबॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को, और चैटबॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश ये की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
1: राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में 14 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का निशुल्क टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीग में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही स्कूलों में जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। डीग जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये वैक्सीन बालिकाओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में सहायक है।
5: जो HPV वैक्सीन है बच्चियों को बाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है। जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जो लोग, वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे। तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
1: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और साहित्य तथा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रेरणादायक कामों के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 12 साल में राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले की चिट्ठी में हम आपको बताएंगे विकास कार्यों, एचपीवी टीकाकरण, नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में। साथ ही होगी बात ग्राम कृषि महोत्सव और हीटवेव के दौर की। किंतु चिट्ठी की शुरुआत ब्रज की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा के साथ। जिले में इन दिनों श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। अधिक मास की शुरुआत के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर इस पवित्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन और विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तैयारियां की गई हैं। डीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बताया कि परिक्रमार्थियों के लिए प्रमुख पड़ाव स्थलों पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कई सरकारी विद्यालयों को अस्थायी आश्रय स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिले को करीब 24 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं की सौगात मिली है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। जल संसाधन मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पिछले दिनों परमदरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी उनके साथ रहे। किसानों की सुविधा के लिए ककड़ा चैनल के जीर्णोद्धार और गुड़गांव कैनाल सिंचाई परियोजना के तहत टेल डिस्ट्रीब्यूटरी और इसकी माइनर्स की पुनरुद्धार कार्यों को पूरा कर इसे जनता को समर्पित किया गया। इसके अलावा डीक डिस्ट्रीब्यूटरी की दीदावली परमदरा और डीक सब माइनर के जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास किया गया। डीग जिले को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से जोड़ दिया गया है। इससे इन नदियों का पानी आने वाले समय में मिलेगा। गृह राज्य मंत्री श्री बेढम ने बताया कि पेयजल संकट के समाधान के लिए हर घर नल योजना के तहत अगले 2-3 महीनों में लगभग 40% काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में डीग जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। जिले को 13,855 बालिकाओं के वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से 10,000 से अधिक बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाया जा चुका है। 72% से अधिक टीकाकरण कवरेज के साथ डीग प्रदेश में पहले स्थान पर है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान के तहत जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया सहित अन्य जांचें भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल ने बताया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के साथ ही जिले में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने के बारे में भी सचेत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जिले में साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति रोकथाम के लिए विशेष कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत हर महीने के पहले शनिवार को विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। वहीं दूसरे शनिवार को नशे की लत से बचाव के लिए नशे से होने वाले गंभीर नुकसानों के प्रति सचेत किया जाएगा। तीसरे शनिवार को साइबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में सतर्क किया जाएगा। पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से इन दिनों महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल, कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रही हैं। पिछले दिनों कुम्हेर के कृषि विज्ञान केंद्र में ग्राम कृषि महोत्सव रखा गया। इसमें जिले भर से महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को नई कृषि तकनीक, मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी दी गई। जिले में इन दिनों प्रचंड गर्मी और हीट वेव का असर है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के मरीजों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लाडला 12 साल माए राजस्थान जैव विविधता दिवस रे मौके देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल देश माए 47 ठोड़ा राख्या जावन वाला 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत 51,000 नौजवाना ने नौकरी लागन रा कागजात सौंपेला। श्री मोदी रो ई मौके मौजूद लोगों ने संबोधित करन रो ई कार्यक्रम है। नुआ चुनीचिया कर्मचारी रेल गृह और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग समेत केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा मंत्रालय और विभाग माए कामकाज संभालेला। जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल फैला। अजमेर माए फेवन वाला कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल फैला। देश री सरहद री हिफाजत और मजबूत और करड़ीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली माए आज सीमा सुरक्षा बल BSF रा अलंकरण समारोह माए आ जानकारी दीनी। वह कहो कि इन परियोजना माए ड्रोन रडार कैमरा और दूजा तकनीकी साधन शामिल फैला। गृह मंत्री कहो कि स्मार्ट बॉर्डर रे सोच रा तेत BSF री सुरक्षा प्रणाली माए प्रौद्योगिकी न शामिल कर आवता एक साल माए नी भेजो जा सकबा वालो सीमा सुरक्षा ढांचो विकसित करण सारू काम चाल रियो है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आए।
0: गृह मंत्री कहो कि BSF साल 1965 में 25 बटालियन और सीमित साधना सागे काम शुरू की न हो। शाह कहो कि BSF अब 2,70,000 कर्मचारियों री मोटी तादाद सागे सरहद री हिफाजत करने वालों दुनिया रो सब मोटो बल बन गयो है। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों रा चुनाव 31 जुलाई 2026 ताई करावन रा हुकम दीना है। अदालत ए चुनाव ई साल दिसंबर महीना ताई टाल देवन रे सरकार री अर्जी खारिज कर दीनी। हाईकोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा री सदारत वाली खंडपीठ चुनाव प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 20 जून ताई रपट पेश करन रा हुकम दीना। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा अदालत रा फैसला माथे कहो कि सरकार चुनाव करावन सारू तैयार है। दूजिकानी विधानसभा में विपक्षा नेता टीकाराम जूली हाई कोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो। वह राज्य सरकार माथे सोच समझ हर चुनाव टाळबारी कोशिश रो आरोप मांड्यो। चुनाव आयोग राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा कार्यक्रम रो ऐलान करतीनो है। कार्यक्रम रे मुजब चुनाव री अधिसूचना 1 जून 2026 न जारी करी जावेला। पर्चा 8 जून ताई भरिया जा सकेला और 11 जून ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। 18 जून न वोट पड़ेला और वाई दिन सिंजा रिपोर्ट वोटा ने गिनती करी जावेला। वो चुनाव प्रदेश री 3 सीटा समेत 10 राज्यों री 24 सीटा सारू करायो जावेला। आ 24 सदस्यों रो कार्यकाल जून जुलाई 2026 माए पूरो भे जावेला। राजस्थान में चुनी जिया 3 सदस्य नीरज डांगी राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह रो कार्यकाल 21 जून 2026 ने पूरो भे रियो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री सदारत माए आज राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी ची। अब थोड़ी देर पछे राज्य मंत्रिमंडल रा सदस्य मीटिंग माई करी जिया फैसला री जानकारी दे वेला। करीब 3 महीना पछे वी मंत्रिमंडल री आ मीटिंग खास मानी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी

0: जयपुर अजमेर सुन रहा हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो है कि लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलाओं जुड़ियों बुनियादी ढांचो तेजियों विकसित करी चियो है। श्री वैष्णव आज जालौर माए भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवारी शुरुआत रे मौके राखी जिया जलसा माए बोल रहा है। वह कहो कि पहली राजस्थान माए रेलना रा विकास सरु हर साल 500-600 करोड़ रुपया मिलता है, जबकि अब हर साल 10,000 करोड़ रुपया खर्च करया जा रहा है।
1: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीपुर की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीमड़ी की डबलिंग आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
0: श्री वैष्णव भुज बरेली एक्सप्रेस गाड़ी ने हरी झंडी बता रवाना की नी। आ गाड़ी भीलड़ी जालौर लूनी और जयपुर वेती दिल्ली पुगेला। इनू जालौर री जनता ने पहली दफा दिल्ली ताई सीधा संपर्क रो सुबितो मिल सकेला। श्री वैष्णव रो अबू थोड़ी देर पछे पाली माए रेलवे स्टेशन माथा कराया जा रहा विकास रा कामा रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनू पहली रेल मंत्री आज समारह जोधपुर स्टेशन 20 डिब्बा वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली कैंट स्टेशन सारू रवाना की नी। पहली ई गाड़ी माए 8 डिब्बा हा। रेल मंत्री जैसलमेर स्टेशन माथे नुआ बनाई जिया कोच केयर कॉम्प्लेक्स रोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत उद्घाटन कीनो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जनताओं सगला प्राणियां सारू भेड़ो भविष्य बनावण माए मदद करन रियरच कीनी है। वे आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौके मध्य प्रदेश रा भोपाल माए राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। यादव कहो कि कुदरत रा प्रति इंसान रा मन माए कृतज्ञता रो भाव वे उनु चाहिए।
2: बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दे, सबके एग्जिस्टेंस के साथ बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा तो ये हजारों साल का सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र एक सूचना तंत्र भी समाप्त है।
0: जैव विविधता दिवस रे मौके प्रदेश में आई न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखी जिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा री ओर एक कॉलेज में विद्यार्थियों सारू सवाल जवाब रिहोड़ रखी जी और जैव विविधता ने बचावन रा महत्व रे बारा माए जानकारी दी जी। हनुमानगढ़ जिला रा टिब्बी री सरकारी स्कूल माए विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखी जियो। ये मौके पौधा रोपी जिया और परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। पाली माए पर्यावरण ने बचावन री सौगन लेवन पौधा रोपण और पानी बचावन जुड़िया कई कार्यक्रम रखी जिया। 1 अप्रैल 2026 हूँ लागू करी जिया नुआ आयकर कानून रे बारा माए जाग चकावन सारू चलाई जिया अभियान। प्रारंभ रातेत आज जयपुर माए खास कार्यक्रम राखी जियो। कार्यक्रम माए इनकम टैक्स महकमा रा आला अहलकार न्यारा न्यारा हित धारका सागे बातचीत कर नुआ कानून रे बारा माए विगतवार जानकारी दीनी। कार्यक्रम माए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वकील और उद्योग जगत रा नुमाइंदा शिरकत कीनी और सुझाव दीना। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का राज्य रा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार बतायो कि 1 अप्रैल नु लागू करी जियो नुओ इनकम टैक्स कानून नानो और आसान है।
3: ये नया अधिनियम जो है ये पुराने की तुलना में बहुत ही सरल है, छोटा है, जिसको समझना आम जनता के लिए भी आसान होगा। चीजों को आसान बनाने के लिए कई टूल्स भी लाए हैं जिसमें कि चेकबॉक्स और FAQ हैं, जिनको हम कर सेतु बोलते हैं FAQ को और चेकबॉक्स का नाम कर साथी है। नए कानून में कोशिश ये की गई है कर को समझाने की भाषा सरल और सहज हो।
0: टाबरिया ने बच्चा दानी रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू HPV टीका लगावन रा अभियान रा तेज डीग माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री टीमा गांव माए जार इन बाबत जाग जगा रही है। जिलारी स्कूलां माए टावरियां रे एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। डीगरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सिंह बतायो के ओटी को टावरियां सारू सुरक्षा कवच रो काम करे है।
4: जो एचपीवी वैक्सीन है बच्चियों को बाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए उनके प्रिवेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको केवल बच्चियों को दिया जा रहा है। जो एडोलेसेंट एज की जो बच्चियां हैं उन्हीं को ये टीका लगाया जा रहा है। पहले ये टीका काफी महंगा आता था, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जो लोग वो लोग ही इस टीके को लगवा पाते थे, तो सरकार ने इस टीके को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क सबके लिए इसको उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रखा जावन वाला 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए 51,000 उम्रता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपेला। देश की सरहद री हिफाजत और मजबूत और करडीकरण सारू स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करी जावेला। राजस्थान हाईकोर्ट आज सरकार और चुनाव आयोग ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रा चुनाव 31 जुलाई तय करावन रा हुक्म दीना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो लाडला 12 साल माए राजस्थान माए रेलम जुड़िया बुनियादी ढांचा रो तेजी विकास थियो। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस रे मौका देश और प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखी चिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
5: आकाशवाणी जैसलमेर के हम गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगन सुना रहे सभी भाइयों ने, मनोज बहरा ग्राम जगह, राम राम। तो भाइयों, आज 22 मई है। आज आप और जो चर्चा और सबसे पहलू विषय है, जैसलमेर थार रेगिस्तान में राष्ट्रीय मरु उद्यान DNP क्षेत्र डेजर्ट नेशनल पार्क। थार रेगिस्तान रो एक अद्वितीय और भारत रो सबसे बड़ो संरक्षित क्षेत्रों में से एक। जैसलमेर में लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर में फैलोड़ो और बाड़मेर में लगभग 1262 वर्ग किलोमीटर, जिले में कुल 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलोड़ो राज्य रो सबसे बड़ो अभयारण्य क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से धौलपुर जिले से भी यह बड़ो क्षेत्र है। यह राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण, चिकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और जहरीले पीवड़ा सांप रे वास्ते प्रसिद्ध है। इरा अंतर्गत आकलवुड फॉसिल पार्क, जिको कि लगभग 18 करोड़ साल पुराने लकड़ी के जीवाश्म आज तक भी संजोए हुए रखोड़ो है। इतरे इतरे टीलों और साथ साथ चट्टानी धरातल, नमकरी झील और कंटीली झाड़ियाँ भी शामिल है। जैसलमेर शहर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। पर्यटन दृष्टि से डेजर्ट नेशनल पार्क एक बहुत ही बढ़िया अभयारण्य है। कई जो देशी और विदेशी पर्यटक है वो जीप सफारी द्वारा ये पार्क का निरीक्षण कराया करे, जिकर दौरान उन्होंने कई तरह का जो अलग अलग जीव जंतु है, जिके में गोडावण है, चिकारा है या हिरण है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, इंरा जो है बहुत ही अच्छा अच्छा दृश्य देखने को मिलया करे। मुख्य प्रवेश द्वार सुदासारी और समरे इलाके सु वन विभाग द्वारा जो है एक शुल्क के साथ ये नुमाए जो है जाया करे। यह उद्यान यूनेस्को री विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल है। ये पार्क से जुड़ी जानकारी और पर्यटन क्षेत्र में भी अपना जो है आसानी से प्राप्त हो जावे। मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान DNP जो आप बात की, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलोड़ है और इन जो है मरुभूमि राष्ट्र उद्यान नाम से भी जानो जावे। भारत में जो है 107वें राष्ट्रीय उद्यान रूप में भी पहचानियो जाया करे। तो यह राष्ट्रीय मरु उद्यान री DNP जो है छोटी सी जानकारी है। ये दौरान जो है कई यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक जब जैसलमेर भ्रमण कर आया करे, तो आज ये आधुनिक युग में तकनीकी द्वारा और भी जो कई सोशल नेटवर्क के द्वारा जरूर तक जानकारी मिली, तो न सिर्फ वो रेत रे टीलों या जैसलमेरी हवेलियों और किला और निरीक्षण नहीं करने, साथ साथ कई लोग जो है DNP क्षेत्रों भी निरीक्षण कराया करें। और उसी दौरान वहाँ कई नई चीज़ों वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधा है या जीव जंतु है, प्राकृतिक जो खूबसूरती है वो नज़ारों देखना बढ़िया करे। और वो रास्ते जो है देश विदेश तक प्रसिद्ध है। चर्चा ना को जारी रख सो और सुन सो एक बढ़िया राजस्थानी लोकगीत।

तो भाई आप सुनिए बढ़िया राजस्थानी लोकगीत नैना रल्लो भी। आज दिनांक 22 मई है। 22 मई जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस रूप में भी जाने जावे। जैव विविधता रा जो को है 22 मई रो दिवस मनाया जावे। जैव विविधता रो अर्थ है संतुलित पारिस्थितिक तंत्र ना जो को है मानव कल्याण वास्ते बढ़ावा देना। जैव विविधता भोजन प्राकृतिक सामग्री रो अच्छी उपलब्धता रे माध्यम से संस्कृति अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य में योगदान करिया करे। जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु एक समूह होया करे। जानवरों पौधा काऊ यहाँ तक कि जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों की विविधता जो प्राकृतिक जगत तो निर्माण करिया करे। ये सभी प्रजातियों और जीव जंतु एक जटिल जाल की तरह पारिस्थितिक तंत्र में मिलजुल कर संतुलन बनाए रखे और जीवन जो है अपनाने में सुविधा प्रदान करिया करे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई न मनाया जावे। जैव विविधता रे संरक्षण और महत्व वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका जो को है उसके बारे में आप बातचीत कर सो। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा 22 मई न अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ना ये दिवस के रूप में घोषित करियो। यह तिथि युवा से चुनी गई कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो को है वो अपनाओ गयो। तो जैव विविधता रे संरक्षण ये सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों रे न्याय संगत बंटवारे वास्ते एक कानून रूप से ना जो को अंतर्राष्ट्रीय संधि रूप में देखियो गयो। जैव विविधता रो अर्थ है पृथ्वी में पाए जाने वाला सभी जीवों पौधों पशु सूक्ष्म जीवों की विविधता उर्मा जीन प्रजाति और पाचन तंत्र और विविधता भी शामिल है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वास्ते पारिस्थितिक सेवाओं प्रदान करना और मानव जीवन में समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करे। जैव विविधता का महत्व है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना भोजन दवाइयाँ और कच्चे माल की आपूर्ति करानी जलवायु परिवर्तन रो सामना करना सांस्कृतिक धार्मिक और सर्वदात्मक महत्व। जैव विविधता के जरिए आप जो को प्राकृतिक संतुलन है वो बनियो रहा करे। आप देखा करे कई जीव जंतु जीवाणु जो को है सूक्ष्म जीवाणु या सब रे सहयोग शो कर जो है ये प्रकृति रो संतुलन बनो रहे। हर व्यक्ति हर जीवाणु सब रो आप रो एक प्रकृति रे योगदान है। प्रकृति रे जो को संतुलन में एक अहम योगदान है और सब योगदान जो को है जैव विविधता अंतर्गत आया करे। तो भाई हम सुन सही बढ़िया राजस्थानी लोकगीत।

तो भाई आप सुनिए, बढ़िया राजस्थानी लोकगीत चांद चढ़ी हो गगनार, 22 मई आज आप जो है मौसम बारे में जो बातचीत कर सो। तो हवा मध्यम है, दक्षिण पश्चिम री, पूरी गति 1122 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। हवा रो झोंको है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरी आर्द्रता 2332% बताई गई है। बादल 15%, वायु रो दाब है 977/979 है और दृश्यता 100%। आने वाले कुछ दिनों तक जो है तापमान में छोटो मोटो बदलाव हो सके, लेकिन गर्मी है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना बताई गई है। तो जो भी भाई लोग हैं, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो भाई शहर से ग्रामीण तक पलायन करिया करे या दुपहिया वाहनों तक पलायन करे, वो आप लोग जाप्तो पूरा रखे। और दोपहर में जो है तड़के 1 से लेके शाम 5 बजे तक अगर अनावश्यक रूप से पलायन नहीं करे, आप लोग कार्यस्थल है या व्यवसाय स्थल है या और भी आप लोग जो है एक जगह है वो तो सुनिश्चित कर ले। अगर आवश्यक हो तो ही घर से या आप व्यवसाय से या कार्यस्थल से निकले, नहीं तो 1 से 5 बजे तक ज़्यादा विचरण नहीं करे। और क्योंकि स्कूल और भी जो है अवकाश है, तो बच्चों ने जो है दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक आप घर में भीतर ही रखे और विशेषकर बच्चों बूढ़ों ध्यान रखे, ताकि ये मौसम रे कारण जो है आप देखा करो कई बार लू लगना या दस्त लगनी ये सब समस्या आया करे। सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण है ये मौसम रो, एक सबसे बढ़िया इलाज है अनावश्यक बाहर नहीं निकल के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी रो सेवन करो। लेकिन पूरा भी कुछ तरीका है। पहली बात तो अगर आप बाहर से आ रहे हो तेज तड़के धूप सू पसीने सू लतपत, तो एकदम जो है शीतल पेय जल रो सेवन न करके कुछ देर रुक के आप शरीर न जो है एकदम तापमान न जो नॉर्मल करके उसके बाद ही जो है जल रो सेवन करें। और पानी की कमी शरीर में बिल्कुल नहीं आने दे। अगर उस साथ साथ अगर आप नींबू पानी या और भी शीतल पेय पदार्थ जो है वो सेवन करता रहो, तो आप शरीर में पानी की कमी कौन है, पानी की कमी नहीं होने से लू या और भी कोई गर्मी की चपेट जो है वो आप आओ कौन और स्वस्थ रहो। और इस बाद अगर आपने कोई भी तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सक सलाह लेके वो उचित उपचार लो और आप ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बच्चों बूढ़ा बुजुर्ग और सब रोज को है अपना ध्यान रखना है। और साथ ही हमें आप और कार्यक्रम बखत हो गया ले सो थोड़ा सुशी और कैसा राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

लेता जय जो रे दिलरो देवता जय जो मनरो देवता जय जो री मारी छोटी।

अपने करनी है में तो भोजनिया पहना अब को भोजनी हो थे तो जिम्मेदार जो थोड़ो सो जिम्मेदार जोड़ी भारी छोटी।

करता ते दूरी मारी छोटी मारी नैनी नने दले बैरा पीरा रे रूमाल मना लेता जे जोरे।

ਲੈਤਾ ਜੇ ਜੋਰੇ ਮੰਨੋ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਦਿਲੜੋ ਦੇਵਤਾ ਜੋਰੇ ਮਾਰੀ ਛੋਟੀ।

लेता जय जो रे मनरो देवता जय जो दिलरो देवता जय जो रे मारी छोटी नन तले भाई रा पीरा रे रुमाल मारो लेता जय जो रे।

अंदरे धड़े राजा राजा जी रे सारे पिता मारो।

ಕನ್ನಡೋ ಪಣಿಯೋ ಕೇಸರಿಯೋರೆ ಬಂದಿಡೋ ಬಣಿಯೋರೆ ತುರಿರಾ 30,000

0: अभी श्रोता सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। हम आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुत करता है भरत व्यास।
1: जोधपुर दिल्ली आज हम पहुंचे हैं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर, जहां हो रहा है जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 20 कोच और जैसलमेर तक साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस के विस्तार तथा कोच केयर कॉम्प्लेक्स जैसलमेर का भव्य उद्घाटन, जिसका शुभारंभ कर रहे हैं श्री अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय रेल सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। साथ ही साथ आज के मेहमान हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में आरंभ हो रहा है आज का यह जैसलमेर तक साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का विस्तार। गरिमामय उपस्थिति में हमारे बीच हैं श्री राजेंद्र गहलोत, सांसद राज्यसभा, श्री उमेदाराम जी बेनीवाल, सांसद बाड़मेर जैसलमेर, श्री अतुल भंसाली विधायक जोधपुर, श्री देवेंद्र जोशी विधायक सुरसागर और श्री छोटू सिंह जी भाटी विधायक जैसलमेर। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर शहर में जैसलमेर तक साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस के विस्तार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए अपने उद्बोधन में कहा,
2: आज के इस शुभ अवसर पर जब हम सब लोग यहाँ जोधपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के ऊर्जा परक नेतृत्व में जोधपुर को एक और नई सौगात देने के लिए एकत्रित आए, मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं मेरे अभिन्न मित्र, मेरे छोटे भाई और भारत के यशस्वी रेल मंत्री जिन्होंने देश के रेल सेवा को एक नई पहचान दी, भारत को तकनीकी के इस युग में नवीनतम तकनीकियों से सुसज्जित करने में अभूतपूर्व योगदान किया और भारत का विषय, भारत का बदलता हुआ स्वरूप, भारत की बदलती हुई छवि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होते हुए भारत की कथा को पूरे विश्व भर में सूचना और प्रसारण मंत्री के नाते पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे भाई श्री अश्विनी वैष्णव जी मंच पर उपस्थित हम सब के प्रिय, हम सब के आदरणीय राज्यसभा के सम्मानित सांसद श्री राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित जोधपुर शहर के सम्मानित विधायक भाई अतुल भंसाली जी, सुरसागर के सम्मानित विधायक, हम सब के आदरणीय श्री देवेंद्र जोशी जी, आदरणीय विधायक श्री अर्जुन लाल जी गर्ग, आदरणीय पपाराम जी,

0: मंच पर उपस्थित सम्मानित पूर्व मेयर आदरणीय श्री घनश्याम ओझा जी, हम सबके मार्गदर्शक, हम सब का परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी, मंच पर उपस्थित रेलवे के एनडब्ल्यूआर के जीएम डीआरएम साहब जोधपुर, रेलवे के अन्य अधिकारीगण, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, जोधपुर के लोगों की तरफ से, मारवाड़ के लोगों की तरफ से। और मैंने तो लागे कि आजकल आपने हर छठे महीने इन स्टेशन पर आप कार्यक्रम करने आदत पड़ गई है। और भाई साहब आपने खोटी आदत अश्विनी भाई आपने डाल तो दी, और अभी तो 3-4 साल और अपने को ये काम करना है, तो अभी मुझे लगता है 3-4 बार और इसी तरह से यहाँ एक साथ हम सबको आना हो। आज हम सब लोग यहाँ जब एकत्रित हुए, जब आज का ये अवसर जोधपुर मंडल के लिए नहीं, अभी तो हम सब जोधपुर वासियों के लिए, मारवाड़ वासियों के लिए, पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए और विशेष रूप से उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि का दिन है। तो आज हम सब लोग यहां भारत की रेलवे के आधुनिकीकरण, रेलवे में यात्री विस्तारों का विस्तार, यात्री सुविधाओं का विस्तार, और उसके साथ साथ में देश भर में जिस गति के साथ में रेल के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उसी के अनुरूप राजस्थान में भी हो रही प्रगति की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विषय में आप सबके साथ में इस खुशी को साझा करने के लिए एकत्रित आए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते, अनेक अवसरों पर हमने साझा बैठकों के समय में इस बात को सुना है। वो कहते हैं कि रेल केवल एक महज परिवहन का साधन या प्रणाली मात्र नहीं, अपितु ये भारत की जीवन रेखा है, भारत की अर्थव्यवस्था की बदलती हुई तस्वीर के पीछे एक शक्ति है, और उसके साथ साथ में करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं की आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। और ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विचार को, इस विषय को, इस दर्शन को अपने जहन में रख करके पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन का दौर देखा। रेल के लिए कहा जाता था समय पर नहीं चलती, रेल के लिए कहा जाता था सामान्य सुविधाओं का उपयोग जो है वहां कमी होती है। और मुझे याद आता है बहुत सारे लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के वापस भारत में आते थे, वो वहां के रेल की यात्रा के अनुभव साझा करते थे और दुख व्यक्त करते थे कि काश कभी हमारे यहां भी इस तरह की रेल होगी। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अश्विनी जी के प्रयासों से आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया की जिस स्तर की रेल है, उसी स्तर की रेल जो अमेरिका में चलती है, जो जापान में चलती है, जो फ्रांस में चलती है, जो स्विट्जरलैंड में चलती है, उसी क्वालिटी की, उसी स्टैंडर्ड की, उसी गति पर चलने वाली रेल जो है हमारे जो
1: अश्विनी वैष्णव सूचना व प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, आज जोधपुर शहर में जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और जैसलमेर तक साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस के विस्तार तथा जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर कोच केयर कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह में अपने मत के उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं।
2: साथियों, आज इस मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी सभी विराजमान है, मैं सभी को आदर सम्मान से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ, खमागिरी करता हूँ। आज हम जिस काम के लिए यहाँ पे उपस्थित सभी इकट्ठे हुए हैं, वो है हम सबकी बहुत ही मनचाही ट्रेन वंदे भारत, जिसको करीब 2 साल पहले, 3 साल अहमदाबाद वाली पहले, जो दिल्ली वाली जो शुरुआत की थी, तो शुरुआत 8 करोड़ से की थी और जितना इसके लिए डिमांड आई, लगातार डिमांड

0: आती गई आती गई आती गई, तो सीधा इसको 8 कोच से आज 20 कोच कर रहे हैं। आज उस सम्मान के लिए, आज उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में जो देश के संस्कृति, देश की विरासत और देश के टूरिज्म को पूरे विश्व भर में जो पहचान बनाने में लगे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री राज्यसभा में मेरे साथी श्री राजेंद्र गहलोत जी और सभी विधायक बंधु पप्पाराम बिश्नोई जी, देवेंद्र जी जोशी जी, अतुल जी भंसाली जी, अर्जुन लाल गर्ग जी, अनिल चौधरी जी, यहाँ पर जिले के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पालीवाल जी, श्री घनश्याम भोजा जी, रेलवे के सभी अधिकारी, मीडिया के साथी और सभी भाइयों और बहनों जो आप उपस्थित हुए, आप सबको मेरा राम राम, मेरा गौमा बड़ी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। इस ऐतिहासिक पल में मैं आपके साथ 3 या 4 विषय रखना चाहूंगा। सबसे पहला विषय है जोधपुर से और पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियों को आरंभ करने के लिए हमारे प्रवासी सब जगह है, साउथ में है, गुजरात में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, सब जगह हमारे प्रवासी बड़ी संख्या में है। और जहां पर भी जाते हैं वहां पर हमारे प्रवासी राजस्थान के और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बंधु जो मिलते हैं, सबका ये निवेदन रहता है कि गाड़ियां अधिक चलाएं। और गाड़ियां चली भी इस बीच में बहुत सारी, चेन्नई के लिए डेली सर्विस चालू हुई, पुणे के लिए डेली सर्विस चालू हुई, हैदराबाद के लिए डेली सर्विस चालू हुई, बीकानेर से मुंबई की डेली सर्विस चालू हुई, कई नई गाड़ियां चली, वंदे भारत चालू हुई अहमदाबाद के लिए, वंदे भारत चालू हुई जोधपुर से दिल्ली के लिए, तो कई तरह की सर्विसेज जो राजस्थान के लिए चालू हुई और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लिए चालू हुई, अब और ज्यादा सर्विसेज चला सके और ज्यादा गाड़ियां चला सके, इसके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शत शत नमन करता हूँ, शत शत धन्यवाद देता हूँ। वो है जोधपुर में हमारा कोचिंग का टर्मिनल बनाना। जोधपुर में कोचिंग का टर्मिनल बनने से आप देखेंगे आने वाले समय में और देश के कोने कोने से गाड़ियों की आवाजाही, नई गाड़ियां चालू करना एक अति सुगम काम हो जाएगा। और जो लंबे समय से आजादी के बाद से जितनी गाड़ियां नहीं चली, उतनी गाड़ियां अब इस कोचिंग टर्मिनल के निर्णय के कारण जोधपुर से चला पाएंगे।
1: पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी एवं जैसलमेर और जोधपुर के सम्माननीय जनप्रतिनिधिगणों से निवेदन करता हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर जैसलमेर कोचिंग डिपो का उद्घाटन करने की कृपा करें।

0: का बहुत बहुत स्वागत है इस नई शुरुआत के लिए। राजस्थान की विकास यात्रा में रेलवे कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आइए इस पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म देखते हैं।
1: एक विकसित भारत की परिकल्पना, जहां विरासत भी सशक्त हो, विकास भी निरंतर आगे बढ़े, जहां हर क्षेत्र जुड़े, हर सफर आसान बने और प्रगति की रफ्तार देश के कोने कोने तक पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल आज केवल यात्राओं का माध्यम नहीं बल्कि नए भारत की बदलती तस्वीर बनकर उभर रही है और इसी परिवर्तन का एक सशक्त अध्याय है रेल संपर्कों को मजबूती देती भारतीय रेल। देश की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन की पहचान और राजस्थान का गौरव जैसलमेर, हर वर्ष लाखों पर्यटक इसके सुनहरे किलों, मरु संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को देखने यहाँ पहुँचते हैं। बढ़ती आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 67 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर में कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है।

0: pit line, shed, washing cum stabling line, sick line, mechanized laundry सुविधा से युक्त ये डिपो अब अधिक ट्रेनों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करेगा, जिससे क्षेत्र में भविष्य में नई रेल सेवाओं का संचालन संभव हो सकेगा। और यही नहीं, उन्नत अनुरक्षण सुविधाओं के साथ भविष्य में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के संचालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और अब रेल विकास की दिशा में जैसलमेर को मिल रही है एक और बड़ी सौगात, अहमदाबाद जोधपुर एक्सप्रेस का विस्तार अब जैसलमेर तक। इस पहल से गुजरात और राजस्थान के मध्य कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, पर्यटन को नई गति मिलेगी, स्थानीय रोजगार को मजबूती मिलेगी और यात्रियों के लिए सफर पहले से अधिक सुगम और सुविधाजनक बनेगा। और बदलते भारत में बढ़ते विश्वास की एक और मिसाल जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पहले 8 कोच के साथ शुरू हुई थी, लेकिन यात्रियों के बढ़ते विश्वास और भारी मांग को देखते हुए अब इसका संचालन 20 कोच के साथ किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को मिले और अधिक सीट की उपलब्धता, तेज, आरामदायक और आधुनिक रेल सफर का अनुभव। ये केवल रेल सुविधाएं नहीं, ये पर्यटन, व्यापार, रोजगार और नए अवसरों की नई रफ्तार है। भारतीय रेल अब केवल दूरी नहीं घटा रही, बल्कि विकास को देश के हर कोने तक पहुंचा रही है। भारतीय रेल नए भारत की नई रफ्तार।
1: झांसी अतिथियों से निवेदन है कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गणेश सिंह शेखावत जी, माननीय सांसद महोदय एवं आनंद जनप्रतिनिधि का हरी झंडी दिखाकर जोधपुर दिल्ली के बीच संचालित 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन और जोधपुर अहमदाबाद जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार को हरी झंडी। आनंद जनप्रतिनिधि से भी निवेदन है, कृपया आप भी इस नई शुरुआत के सहभागी बने। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर मौजूद विशिष्ट अतिथियों से भी अनुरोध कि आप सभी भी इस पक्ष नई शुरुआत के सहभागी बने। रेलवे की विकास की एक नई इबारत लिख रहे हैं माननीय रेल मंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का बहुत बहुत आभार इस नई शुरुआत के लिए।
2: जैसलमेर शहर से जैसलमेर विधायक पूर्व सभापति हरिवल्लभ कल्ला, नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित और रेलवे के अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाते हुए जैसलमेर जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर के रेलवे स्टेशन पर बड़े हर्षोल्लास के साथ रवाना किया।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुत करता थे भरत व्यास। हम आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:17 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
4: बागों में बाहर है? है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
5: बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है।

0: बेचैन रहती है प्रेम दीवानी, बोलो क्या दिल बेकरार है, मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: श्रोताओं अभी आपने सुना आराधना फिल्म से ये प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत दीवाना फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दीवाना फिल्म से ये प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत, 1942 लव स्टोरी फिल्म से।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना 1942 लव स्टोरी फिल्म से ये गीत। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और फिर News@9। इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: बल स्थापित करने पर सहमत, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एक

के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुविधा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल त्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश

के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था, ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए, तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन

सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: be held in New Delhi on 26th of this month. And in IPL cricket, match between Sunrisers Hyderabad and Royal Challengers Bengaluru underway. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज़ में अनाड़ी फिल्म से।

वाला छाती पे आए चमक चांदनी, होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागी। बैंड बजाऊंगा झूमके गाऊंगा, प्यार तेरा होगा बारात सजेगी, सजनी सजन होगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना।

जब चल पड़े सफर को तो क्या मुड़ के देखना है, दुनिया का क्या है उसने सदा बार बार दी।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।

ले गेरा बाझ तुरी अमला बेला अपना

ਨਤੀਦਾ ਸੁਝਰੀ

0: রাধা খেয়ালো তোরণ
1: আরে বাদিল তোরি লিখ মে হো

ಬಾಬೋಗೆ ಬಾದಲಿನ ಹತ್ತಿಗೆ ಕುಲಮಿದೆ ಚಿಕ್ಕಪಾಲ ಕೂನೆ ಚಿಕ್ಕಪಾಲಿ ಸೋ

Sai da cabo.

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाएंगे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: लेना है तो आ सपना दे दे।
1: तो सपनों के साथ आ गए तो सपना दे दे।
0: सपना लेना है तो

0: है तो आ सपना दे दे,
1: वो सपनों के साजा है एक सपना दे दे,
0: सपना लेना है तो

0: गाली दिए
1: हो।
0: अरे थोड़ा सा बरका मैं गाली।

जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने।

0: अनिल इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बंद करा गए, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।

अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है। फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं?

0: बात नहीं कर रही। मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं।
0: तो फिर गुमसुम क्यों हो? क्या बात है?
1: एक तो परदेश जा रहे हो, कहते हो एक साल क्या है, देखते देखते निकल जाएगा।
0: धत तेरे की, बस इतनी सी बात है?
1: छोड़ो।
0: देखो शोभा, यू नाराज मत हो, मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होती तो मैं परदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो। ओफो।
1: ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं। जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना। इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो।
0: अच्छा, मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहां की कोई लड़की फिदा हो गई तो
1: मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है।
0: जलन नहीं होगी?
1: बिल्कुल नहीं। अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक

0: अच्छा
1: तो मालूम है खबर
0: तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर।

मेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।

क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक है हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। क्यों भला

से झुक जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी सारी बातें यही बस रुक जा

जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएगी, जी को तरसाएगी, ये कर देंगे दीवाना कोई इनको।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
3: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
2: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
4: Discussions focused on enhancing cooperation.
5: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
4: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए ITBP की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने ITBP के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है।
6: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus President said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorists and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counterterrorism.
3: Aaj humne cyber security, maritime security और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
6: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force Investiture Ceremony and Rustamji Memorial Lecture in New Delhi today. He said that work is in progress towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept. He said the ministry will soon introduce a smart border project equipped with drones, radars, modern cameras and other advanced technologies. The Home Minister said once this initiative begins, the work of the Border Security Force will become significantly easier and stronger. He emphasized that India must adopt new strategies to address cyber threats, hybrid warfare and drone-based challenges. Short-range ballistic missile Agni-1 was successfully test-launched from the integrated test range at Chandipur, Odisha today. Ministry of Defense said that the launch validated all operational and technical parameters. The test was carried out under the aegis of the Strategic Forces Command. The successful launch marks another milestone in India's strategic defense preparedness and reinforces the credibility of the country's minimum credible deterrence capability. Agni-1 is a short-range surface-to-surface ballistic missile developed indigenously as part of India's strategic missile program. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said, in keeping with Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा समाप्त होती है। कल दिन के 11:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।